0: तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ना ब्यावे वो ही साध कुड़ी रात कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे यार शर्म धर्म का डेरा दूर नान कुड़ रहा भरपूर
1: मथे टिका तेल कुत्तिक खाई हथ शुरी कसा नील बस

पौड़ी जी सेवे सुख पाइए सुख साहब सदा संभालिए जी किता पाइए अपना सा घर पूरी क्यों खाली है मंदा मुल की लंबी नजर निहाली है जो साहब ना रेत्या पासा ढालिए किचलाए उपर खाली।

पोली वड्डी होंडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग निकल जापन करतबा जी आंदर जियो सबके जान ला सबके तेरे बत तेरा घर बला तेरे घरन दुदाए तुद कर मान मेहता तेजा अपना आप जर सर्व कला भरपूर।

सुनते उधवे वाहिगुरु गावे ते ओए दावे सुनते उधवे वाहिगुरु बिन से पाप घनेरे बिन से पाप घनेरे सचिया बादशा बिन से पाप घनेरे पैसी परे मग दे कोई तारे वाहिगुरु पैसी परे मग

नानक दास तेरी शरण आई वाहिगुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया सदा सदा बल्ले हारे तदिया गे अरे दास है मारी वाहिगुरु तदिया गे अरे दास है मारी वाहिगुरु जियो बैंड सब तेरा जियो बैंड सब तेरा सचिया बादशाह जियो बैंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्डी आई वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्डी आई कोई ना वो ना गया ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

फते गज के जयकार जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुर बर अकाल तेग तेग फते गुरु पंथ खालसे जी की दिनो दिन चढ़दी कला रखनी सचे पाशा जी महाराज।

0: पाहि कहे कि लाज यस गोविंदास दुहार दोहरा राज करेगा खालसा के रह न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए
1: उड़ गई सभा मरीज की कर कुड़ा पासार टंका बाजे पते का मैं कल का अवतार चतर चक्रवर्ति स्वयंभव सुभंग सुरदास रूपते दुगावन प्रणाम से दयाल स्वरूपे सदांग संगे अपंग विभूते देवते गोपते नसर बेदर ज्ञापत अदनान गुरु गोविंद सिंह जी अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तो दरबारा सक्षण सनन कारा लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबारा सर्व देव ते नमस्कार दूरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पुरम अवतार जगमग ज्योत विराज श्री अब तुम्हारा पार सच खंड के

अलख प्रग अवगत अवसुता जात पात जय चेहन्ना वरना अभिगत देव अशय अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग शोक दोकन को हरता एक चेत जय एक छिन्न ध्यायो काल फांस के बीच न आयो तो प्रसाद कबित का तुहू सुचेत हुए के चेतना को चार कियो का तुहू अचेत हुए के सोवत अचेत हो का तुहू भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहू माँ दान हो के मांगो धन देत हो कहू माँ राजत को दीजत अनंदान कहू माँ राजन ते छीन छेत लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जज गंधर्व रह कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जपयो कहूँ होय के तुर का पुकारे बांग देत हो कहूँ कोप काव होय के पुराण को बढ़त मत का तुहू कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूँ इंद्र पदवी छिपाई छीन लेत हो का तुहु विचार विचारत को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंठीधर ब्रह्मचारी कहूँ जो साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पधारे कहूँ फूक फूक पान को पृथ्वी पर धरत हो का तुहू सिपाही हो के साधा सिल्ला हन का कहूँ छत्री हो के अर मारत मारत हो कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीतनाद के निदावन को बतावत कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो का तुहू पयुग हो के पीवत पीवावत हो का तुहू मयुग कहूँ मत पान हो कहूँ माँ सुर हो के मारत मासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतत कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छतधारी कहूँ छाला धरे छल भारी कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजय कहूँ नृत्य के नचय कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादान हो के निर्दोषी निरंकार हो निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की तो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के शुद्धता की सुरत हो के शुद्धता की शान हो जोबन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निदान कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ

सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो। तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुराधन शुद्ध सुदानिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू बली विन्यावशीष न जात बिचारे एते भय तो कहाँ भय भूपदंत को नांगी पाए पधारे जीत फिरे सब दे दिशान को बाजा ढोल मृदंग नकारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसति है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहंद यादम दान सो संजम देव अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जत धार सबे सो विचार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुपा दुरंत दुपा सो सासना दुर्जान तलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्लाए ना हलाएंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलाएंगे वीर अपार बड़े वरियार विचारे सार की धार बछैया तोर देर मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक दवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाए धुन पापन के पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र समय लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधिप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान एक स्वयं पर साज बरेंगे ब्रह्म सर भीषण सचिवत अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न दे धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सा समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बासकियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैद बितायो साचे कहा सो न ले हो सब जेन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लखियो रावासी दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभेद रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुख चार बकद बे अंत अन भेद अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सेंद बिन नगेंद्र कई माछ काछ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार गुहार कई वेद अमुचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई सास सिमृत बखान कहू कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहू जोग भेद उदास कहू नीली गरम करंत कहू पौन हार दुरंत कहू तीर दान पार कहू जग करम उदार कहू अगन होत्र अनूप कई न्याय राज विभूत
कहूं शास्त्र सिमरत रीत कहूं वेद स्यों विपरीत कई देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूं करा जल में जाप कहूं सहतन प्रताप कहूं बाज बने कर अंत कहूं ताप तने सहंत कहूं गृहस्थ धर्म अपार कहूं राजरीत उदार कहूं रोग रहता भरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं से ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंग राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेक ना उशरंत बैराग कहूं संन्यास कहूं फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान।

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरिया भे करिया दोख हरि अलवैग हरि अकाल हरिया पाल हरिया छेद हरिया भेद हरि अजंत्र हरिया मंत्र हरि सो तेज हरिया तंत्र हरि अजात हरिया पाद हरिया मित्र हरिया माद हरि अरोग हरिया शोक हरिया भर्म हरिया कर्म हरि अजय हरिया वय हरिया भेद हरिया छेद हरि अखंड हरिया भंड हरिया दंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरिया भेव हरिया जेव हरिया छेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुई थलस्तुई नदस्तुई नदस्तुई वृक्षस्तुई पतस्तुई छितस्तुई ऊर्धस्तुई भजस्त्वंग भजस्त्वंग रटस्त्वंग ठटस्त्वंग जिमि तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभय तुहि अछू तुहि अक्षय तुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तुहि मतस्तुहि।

फूक मल हरी गज गद हबिबूदारी कि दुआ मसान वास करई करत है। घुगू मड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरबर सदी उपोन सदे मरत है। बिंद के सदयता हीज की बटैया देश बंदरा सदी उपाय नंगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बदन चारी चेत छौना सब दूधाधारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया दान लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रे के भैया मानियत है। नब के उड़ैया तय पंछी की बडैया देर बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानी आते है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना ऐसे ना प्रपंच मन भूलानी आते है। भूम के बसैया जाए भूचरी के जैया कह नब के उड़ैया सुचरैया के बखानी है। फल के भचैया तय बांदरी के जैया कह आदेश फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताय काल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मच तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही अत है। माधव भवर ओट रुको कन्हैया नाम कांस को बदय जम दूध कही अत है। मूट रूट पीटत न गुड़ता को भेद पावे पूजन न ताए जाके राखे रही अत है। विश्वाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान का धूप प्या दे पहते है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहते है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद वेदा कतेब नेत

चंद्रमा तेसी तन्ना सूरते तपज तेज इंद्र सोना राजा भव भूव को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से नवेचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है।

ब्रह्म अर्पिशन के दे वेद पुराण के दे सिमरत समूहन के होए होए बिताए हैं। बोंदी मदार के दे असनी कुमार के दे अंसावतार के दे कालबद्ध भय है। पीरा पिकामर के ते गने न पर देते भूमि ते हो के फेर भूमि ही मिलाए हैं। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महिपा दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करते है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलते हैं। सिज दे करे अनेक तोप ची कपन भेष पोस्ती अनेक दानी बाबत शीश का कहा भयो माले जो पे काटते अनेक दंड सोता न डंडा दास टांग अथ तीस का कहा भयो रोगी जो पे डारे रहे उर्दमो के मानते न मुड़ने हरायो आज इसका कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कैसे पावे जग जिसका शीश पटकत जाके कान में खजूरा दसे मूंड छटकत मित्र पुत्रों के सोग सा आख को चरया फल फूल को बछया सदा बन को भ्रमया और दूसरो न भोग सा कहा भयो भेड़ जोग सस्य वृक्षन सा माटी को बछया बोल बूझ लीजे जोग सा कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत ब्रेज फूक फूक पाँव भू श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठार बास करे कागर चिल देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन मादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बन कर दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगा बेबारी कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रमावई कामना अधीन परे नाचते नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर अगत अनेकदा पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी बीच चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बुढ़ो जड़ गंगदार डार डार फाष्टक मार मार डार ही डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाई है तापना तापना अनेक तन घायल सहते है। जाप के किए थे जो पे पाई है तो जा देव पूजना सदी तू ही उच्च रहते है। नब के उड़े तो जो पे नारायण पाई है अनल आकाश पंछी डोलबो करते है। आग में जरते गते रांड की परत कर पताल के वासी को भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो हिंदू तुरा को रावजी माम सापी मानस की जा सब के पहचान बो कर्ता करीम सोई राज करीम वोई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब के जो जान बो देहोरा मसी सोई पूजा निभाजोई मानस सब एक पे अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नान एक कान एक दे एक बान खाक बादास आपको रलाव है। अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान वो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे आग दे कनुका गोल आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनुका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे। केते काछ मच के दे उनको करत भच केते अच वच हो सब बच उठ जाएंगे। केते ना बीज आज पाज को करेंगे भच केतक प्रत्यक्ष होए बचाए खाए जाएंगे। जल का थल का गगन के गान का काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे। तेज युवा तेज में तेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सबे ताही में समाएंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरद केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी की भ्रमाए फिरत है।
करवा सहद के दे भूम में गड़द के दे सुहा पे चढ़द के दे दू का भरत है। गैन में उड़द के दे जल में रहद के दे ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हरे देवता विरोध हरे दानो बड़े बोध हरे बोधक प्रबोध हरे जापसी घस हरे चंदन लगाए हरे चोआचार पूज हरे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे कोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पज हरे पंडित तपंत हरे तापसी तोप्रसाद भुजंग प्रयाद छंद नारायण नारंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग ना सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बासता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहावै कहा कह बखानो कह मैं न आवै ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैकंग अभेकंग अजोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेरे मेटे बनाए अगादे अभय आद अद्वै अविनाशी परे अंग परा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्यादंग अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतापद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नारंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अछे आदद्वै अजोहंग न जन्मंग न मरनंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भर्मंग ना

ಸ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ಏಕ ರೂಪೇ ನಮೋ ಏಕ ರೂಪೇ ನಾನೇ ಹಂಗ್ನಾಗೆ ಹಂಗ್ನಾ ಸೋಕಂಗ್ನಾ ಸಾಕಂಗ್ ಪರೇ ಅಂಗ್ ಪವಿತ್ರಂಗ್ ಪುನೀತಂಗ ತಾಕಂಗ್ ನಾ ಜಾತಂಗ್ ನಾ ಪಾತಂಗ್ ನಾ ಮಿತ್ರಂಗ್ ನಾ ಮಂತ್ರೇ ನಮೋ ಏಕ ತಂತ್ರೇ ನಮೋ ಏಕ ತಂತ್ರೇ ನಾ ಧರ್ಮಂಗ್ ನಾ ಭರಮಂಗ್ ನಾ ಧರ್ಮಂಗ್
धर्म लूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाजता में कहूँ अक्षर के पक्षर के से साधे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ जंग के रंग पेखे कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपं कहूँ ने ग्रेहं कहूँ देह दोखं कहूँ गति रोग के शोक शोकं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साध की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दान भी हो कहूँ जरज विद्या धरे मान भी हो कहूँ राशि हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के रेष्ठ के पृष्ठ पन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रेष्ठ पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ बेवानी कहूँ को की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ भद्रवाणी कहूँ शुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध से कहूँ कहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ मृद अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रथ देहं कहूँ ने देहं कहूँ त्याग ग्रेहं कहूँ जो भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आर भी तोर की पार सी हो कहूँ पहल भी पस्त भी संस्कृति हो कहूँ देद भाग्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मिले भाग्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवानी कहूँ गारडू गुण कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धी राजाधिकारी नमो नाद पूरे सदा सिद्ध दाता अछे दी अछे आदत व विधाता नातरस्तंग नागरस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग।

तोड तेजन खुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूत तेजन छेज गाज करता सजीव हरता असनाद आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भरण नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योदान जय जात पान नहीं शत्रु मित्र जय ने गे

जय नाम थाम नहीं बरक ब्या, जय रोग शोक नहीं सत्र सार, जय त्रास बाद नहीं दे ना, जय आद अंत नहीं रूप राज, जय रोग शोक नहीं जो जुग, जय त्रास आद नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कटे हो न अंग, अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलग रूप कथत कते, जय अलग रूप आसन अडोल, जय मित तेज अक्षय तोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कलप ए कलप जोग साधन दुरंत, तन शीत घाम बरखा सहंत, कई कलप एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधन, तदप पावत न पार, कई उर्द बादेशन भ्रमंत, कई उर्द मत पावक झुलंत, कई सिमरे शास्त्र उच्चरंत वेद, कई कोप काद गथत कते, कई अगन होत्र कई पौन हार, कई करत कोट मृत को आहार, कई करत साग पै पत्र भाष्य, नहीं तदप दे होवत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद जग कहूँ वेद री जग आदि करम, कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म, कई देद देद भाखा रटन नहीं, कई देद देद विद्या पढ़ंत, कई करत भांत भांतन विचार, नहीं नायक तास पायत न पार, कई तीरत तीरत भरमसो भरम, कई अगन होत्र कई देव कर्म, कई करत वीर विद्या विचार, नहीं तदव

कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म कहूं कई सिमरे शास्त्र उचरा सो कर्म निवली आद कर्म कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मक्को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं करत जज गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमरित उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह दे कई गेह वाद कई भ्रमत दे देसन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदव तास पायत न अंत कई करत गोड विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान ब करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पोह जुगण जुअब जुआंग भय कंपोह मेरे पयाल भुआंग तब तापस सर्व जलेरु थलंग धन इचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखे स्वरूप अभेद अभियंग अनखंड अभूत छेद छियंग अनकाल अपाल दयाल सुअंग जय ठटिया मेरा काज भुआंग अनखंड अमंड प्रचंड रंग जय रचंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग शरम मकीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सापना सोग सुखंग जय रोगना सोगना भोग भोंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेग न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो द चार करी न खंड सचियो रसाम तेज अतेज गियो अनुभव पदा प्रचंड लियो श्री सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्री जाक्ष गंद्र फणिंद भुज रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल कृपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडा सेतज उद भुजंग किए देव अदेव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भोंग जय जम्पर किन्नर जच्छ जुआंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच्छ भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गण भूत भवेक भवान तुअंग जय अंडा सेता जे रजंग रज भूमकाल पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल गली वो मेरा का निवास तंग रज रोज का दा चंद्र मृतंग दुध चंद दिनेश दीप जय जय पावक पान प्रचंड मई जय अंड जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतर जय चार रचे नर गंधर देव अधेव सचे अनधूत अभूत अछूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतर दस चत्र फिर चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुअंग भो भंजन गंजन आस्तिरंग जय बंदर देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणग मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्वतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूत अभूत न भेद लह है जय वेद पुराण कतेव जपै सो संधा दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नय कृपा निद पान पर जय फोगण धर्म सवै तज है छेद कृपा निद को जप है तिव या भो सागर को तर है भो भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना नय कोट वृति हिम वेद उचार सा सुति जो वारस के चस के रस है तिव भूल न काल फंदा फस है तब प्रसान राज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दास सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अचित तेज मानिए सदी सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग तक है भूत भ्रम भेक है न तात्मा तथा जात है न पाच्य न बरन है अदेगा सेगा भेक है सदी विश्व भरन है
विश्वंबर विश्वनाथ अभिषेक विश्व भरण है। जिमी जमान के बिखे सदयु करम भरम है। अद्वै कह अभेख अलेख न जानिए सदयु सर्व ठौर में अभिषेक अन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत के बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आ देव है कहु सो कह पाइए। जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है। न घाड़ है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान समान रूप जानिए। मकीन औ मकान प्रमाण तेज मानिए। न देह है न गे है न जात है न पात है। न मंत्र है न मित्र न रात न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न जात है। न धोग है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न सियार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न धाग है न संग है। न जाच है न गंधर्व है न नर है न नार है। न चोर है न शाह है न शाह को कुमार है। न ने है न गे है न देव को बनाओ है। न छल है न छित्र है न छल को मिलाओ है। न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को स्वरूप है। न राग है न रंग है न रेग है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को बनाओ है। न छल है न छिद्र न छाया को मिलाओ है। न राग है न रंग है न रूप है न रेक है। न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है अकाल खंड रूप है। अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है। परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है। अगंज है भंज है करीम है कुरान है। अकाल है अपाल है अख्याल है अखंड है। न रोग है न सोग है न भेद।

पार्थिव दोष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार बेर पे होना पावई से रुद्र मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत फे मुखचार आद अंत न मज्जा को भूत भगवान सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाई है ते पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाद

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बितैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है का श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। क जी तब का मरण है कवन सुर कह नरक, को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक। दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म, कवन जोग को भोग है कवन कर्म अपकर्म। दोहरा कहो सुषम का शोक है दम को कहा कहंत, को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत। दोहरा कहा रंग राजा कवन हरंग शोक है कवन, को रोगी रागी कवन कहो तत मोहे तवन। दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ छेद प्रकाश। दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान, को रोगी सोगी कवन कहाँ धर्म की हान। दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहाँ जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। दीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन, दोष्ट निकंदन आद ब्रते चचरासुर मारण पते उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते। अच्छा खंडे तेर चंडे खंडु डंडे अलखमते, जय जय होसी मय का सुन मर्दन राम कपड़दन छत्र छिते। आसुरी विहंडन दोष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदंसन महक मथे। दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदाहरण उर्द अधे, जय जय होसी मय कासुर मर्दन राम कपड़दन आदृते। डावरु डवंक बबर भुवंक भुजा फरंक तेज बरंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके असिंह झमके फुंग फनंग। जय जय होसी मय कासुर मर्दन राम कपड़दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन वंड में मंडन खंड अखंडन खून खिते। दामनी दमंकण भुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते। सरदार विबरखन दोष प्रकरकण पुरुष प्रहरकण दोष्ट मथे। जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम काश तल उर्दा थे। दामनी प्रहासन सोछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते। रक्तासुर आचन ज्योत प्रमाचन हृदय नराचन धर्म वृते। श्रोणत अचिंती अनल भयंती जो जयंती खड़ग धरे। जय जय होसी मय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे। अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते। फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते। सैति स्नान अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग। जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग। चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम दुकारण द्रव मथे। दाढ़वी प्रदंते जो जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे। करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे। जय जय होसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे। घुंगरु घमंकण छत्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे। अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते। केसरी प्रवाहे शोध सनाय अगमत है एक वृते। जय जय होसी मय कासुर मर्दन आदि कुमारक आदि वृते। सुर नर मुन वंदन दोष निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे। कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आदि कथे। किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले। जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले। संकटि निवारण अधम उदारण तेज प्रकरकण तोंतबे। दुख दोग दोहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद अच्छे। शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे। जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे। चंचला चखंगी अलग भुजंगी तोंतरंगन दच सरे। करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे। दामनी दमंके के हरलंके आद अदंके कुरूर कथे। जय जय होसी रक्तासुर खंडन सुम चक्र निसुम मथे। बारज विलोचन ब्रितन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे। दामिनी प्रहासे सुखसरनासे सुभ्रि सुभासे दोष्ट करसे। चंचला प्रंगी भेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग। जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग। घंट का विराजय रुणजुण भाजय भ्रम भय भाजय सुनत सुरंग। कोकल सुन लाजय कल्पिक भाजय सुकुप राजय मद उरंग। दुर्जन दल दज्जय मंथन रज्जय सब न पज्जय रोरणंग। जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चकर्दन आद गुरंग। चाचरी प्रजोदन दोष्ट विरोधन रोज अरोधन क्रूर वृते। धूम्रद विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विध्वंसन शुद्ध मते। जालपा जयंती सत्र मथंती दोष्ट प्रदाहन गाढ़ मते।
जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आदनंगी अगाध गते ब्रिड लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद ब्रते सुर नर प्रत पारण पति धारण दोष निवारण दोग हरे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन वैश्व विदंशन श्रेष्ठ करे दामिनी प्रकाशे अंतर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर वर्क दानवी प्रकरखण सर्वर वर्खण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टायुध बाण बोली बाहण संत पनाहण गुड़ गते जय जय होसी मैं कासुन मर्दन आद अनाद गाद ब्रते दुग दोग प्रपक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण सुध सरे सारंग सनाए दुष्ट प्रताए अर्दल गाए दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आदंते जय जय होसी मैं कासुन मर्दन साध प्रतंजन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकण छत्र झमकण दामिन दमकण आदमृते डुगडुगी दबंके बाघ बबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हुसी मै का सुन मर्दन आज जुगादन आदमते चचरासुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पते धारे मुंड मथे जय जय होसी मै का सुन मर्दन धूम्र विदंसन आदि कथे रक्ता सुन मर्दन चंड चकर्दन दान वर्दन बिडाल बधे सरदार बिभरकन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विदुंसन सुवर्ण चुनसन सोम नृपाद निशुंभ मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जब दब अभूतन भय अनंत कहो तव कहो जथा मत रैन तन करता करीम कादर कृपाल अद्भय भूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख दोग रह जय नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सवार पार जा को प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों ना सेवंता है कई मूड पत्र पूजा करन कह सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पलट सूरा सिद्धा कराए प्रभ एक रूद वह कह लखाए अन छज तेज अन भय प्रका दाता दुरंग अद्भय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सार जय जात पात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी ना जाय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेग कह नाम तास है कमल जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जान की करंद पाल उर्दंग विराज सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछिज तेज अनभिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत नेजन उचरंत पायो न जय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत कह जय नेत नेत निज दिन उचरंत तो प्रसाद सवैया।

दोखन देखत है पर देत न हरे। दास दुदोखन को दल दुचन के पल में दंडारे, खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे, रोज ही राज लोग राजिक रोग रोहान की रोजी न टारे। कीट पतंग घुरंग जंगम भूत भविक भवान बनाए, देव देव खपे हमे न भेव लखे भ्रम सिंबर माए। वेद पुराण कतेब गुरान सेव थके कर हाथ न आए, पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत से केन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगादत भेग सो भूत भवेग भवान वह है, अंत विहीन नातम आप दागा दोग क्षेत्र अच्छा है। लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है, दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय है, देवहीन सने सबोतन ने व्रक्त गह चह है। जान को देत जमीन को देत जमान को दह है, काहे को डोलत है तुमरे शुद्ध सुंदर सी पद्मापद लय है। रोगंते अर्थोगंते जल योगंते भवभान बचावे, शत्रु अनेक चलावत घा तऊ तन एक न लागन पावे। राखते अपनो करदे कर पाप समूह न भेटन पावे, और की बात कहा कह तो ससो पेट ही के पट बीच बचावे। जाज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे, भूम काल पताल रसा चल जाज भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नी पार बाहु को नेत ही नेत वेद बतावे, खोज सके सब ही कुजिया सुर हार परे रात न आवे। नारद से चतरान से रूम नारी से सब हो मिल गायो, भेद कते ना भेद लगे सब हार पर हाथ ना आयो। पाए सके निपार पाव से सना सनातन ध्यायो, ध्यान धरो तय को मन में जह को अमितो सब जग छायो। भेद पुराण कते पुरा भेद निर्पाण सब बजहारे, भेद ना पाए सके उन भेद को खेदत हैं छेद पुकारे। रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संग तिहारे, आदे अनादे अगादे अभेग अद्वेग जबियति निकुलतारे। तीरथ कोट की ऐशना दिए बोदान महाव्रत धारे, देश भरियो कर दे भेष तपो धन के धरे ना मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्याज करे मुकारे, दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया, छत्र धारे के छलैया में सतरन के साल है। दान के दिवैया महमान के बढ़िया, अवसान के दिवैया कटैया जम जाल है। जोध के जितया विरध के मिटैया, माँ बुद्ध के दिवैया माँ मान हु के मान है। ज्ञान हु के गाता माँ बुद्ध ताके दाता देव, काल हु के काल माँ काल हु के काल है। पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय जावे, गोर कर तेजी को निगावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पवन साधना की तेग बादे, आरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने, पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगले तेरी मानसो तपस्या कर, दृढ़ तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रो के रोहिले मांग देश के मंगली बेर बंग, शिव दिले पापुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन व चीन के शीश नियावे, तिब्बती ध्याय दो देह का दलत है। जिन्हें तोहे ध्याय तिन्हें पूरन प्रताप पायो, सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दान बान को, महेश गंग दान को अभेद कही अत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण, और काउ पे न दीन साध अधीन कही अत है। पाइय न अपार तेज पुंज में, अपार सर विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचाता है, चीटी की चिंगार पहले ही सुनी अत है। कहते द्वार कहते ब्रह्मा विचार, कहते कृष्णा अवतार कहते राम कही अत है। कहते सस राशि कहते सूरज प्रकाशी, कहते मुंडिया उदासी जो द्वार करते है विचार पहना पूरन को पावे पार, ताही ते अपार निराधार लही आते है। पूरन अवतार निराधार है ना पारा बार पाई है ना पार पे अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी, मां रूपों के राशि है नासी के मानी है।
जंत्र हुना जा जागी बाप हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा गए मानिया है। तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोनी को मंत्र निजंत्र के जानिया है। तेज हूं को तरह के राशि को सारे के शुद्धता को हरे के शुद्धता की सार है। कामना की खाने के साधना की साने व्रक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप के भूपन को भूप के रूपों को रूप कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक के साधन को रक्षक के गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा के खूबी को दिहिंदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है। काल हुके काले के सतरन के साले के मित्रन को भोगत के वृद्धता की वासी है। जोग हुको जंत्र के तेज हुको तंत्र के मोनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है। रूप को निवास के बोध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बोध हुको घर है। देवन को देव है निरंजन अभे या देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचाए मान को दिवया जम जाल को कटे कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है। विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार पार बार हुको पा जाओ की जल विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय गावे हबसी लंबी धावे पूर्वी ना पार पावे आशा ते अनास है। देवन को देव महादेव हूं को देव है निरंजन अभेव अविनाशी है। अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक धीने कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया मुहैया बाल के। राजन के राजा मा साज हूं के साजा मा जोग हूं को जोग दरैया ध्रुव छाल के। कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की साथी काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा व छाज कैसी छतरा ने छपा कैसी छप कालिंद्र के कुल के। हंसनी सी सिहारूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार जली सातो सिंध रूल के। परासी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरती हरी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोई अत है। हिम्मा सी हिमालय हर हाप सी हल्लबानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे सुमोही आते है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोई अत है। गंगा सम गंग धार वकांसी बिलंदाबाद कीरति हरि की उजारी सोही अत है। फरासी फेरंगी फरासी से के दो रंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई अत है। भखरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्याई अत है। पूरा पलाव काम रूपा कमाओ सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जाई अत है। पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ज्ञातापी नाद गिरति हरि को ना पार

अच्छा स्वरूप व्यक्त नाथ आ जान भाव सर्वा प्रमाद जात मही बंतन प्रफुल्ल शोभा बसन जात प्रडुल्ल बन तन दुरंत खग मृग मह।

हे निमाने दे मन सतगुरु नितान दे ताने उठे जो निआसरे दे आसरे गुरु गरीब निवास जी आप जी दा जरूरी कीर्तन करदे हो यहां सबद बैठा जरूरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना में पहलो सबद बैठा जरूरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी सबना दे लिख लाउनी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दा